गाउड़ी सुखमनी महला पंजवा सरोग एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरु नमः जुगादि गुरु नमः सतगुरु।

0: कला रखड़ीश के पाशा जी महाराज
1: जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन स्थान तकत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन स्थाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार कीर्तन वजों बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह सतगुरु आप जी नाम जानी जानो सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता नाम दिया दाता हर मैदान हर कार्य पतेर करना सतगुरु जी कार्य राज करनी यात्रा सपने

ज्ञान के विहीन छिन्न कैसे कह तरत है। भूत बन जारी चित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। दृण के फछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बकला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पे बखानी नाहे ऐसना प्रपंच मान भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बसैया ताहे बांदरी के जैया कहे आद सफिरैया ते तो भूत कह पछानी है। जल के तरैये को गंगी ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनद कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है।

करीम सोई रास कर हिम ओई दूसरो न भेद कोई बोल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब ही को गुर देवे एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो देह राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मानस एक बय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

जैसे एक आग ते कनु पकोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कित कछ मछ कित उन को करत वाच कित अच वाच हो सब।

तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करबत सहत कित भूम गड़त कित सुवा पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के बिन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घास हारे चंदन लगाए हारे चोआचार भूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली बारे वितन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

दोखं कहूं औखदी रोग के सो को सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जा छकंद्रव के नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जा छ विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं

राजरीतं कहु पूर्ण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु अरबी तोर की पारसी हो कहु पहल भी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश भाख्या कहु देववाणी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारंग कहु जंत्र रीतं कहु शास्त्र धारंग कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मले जवाख्या कहु वेद रीतं कहु नृत्य विद्या कहु नाग बानी कहु गारड गूढ़ कथा कहानी कहु अक्षरा पक्षरा पक्षरा हो कहु वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहु छल छाला धरे छत्र धारी कहु राज साजं धे राजा

आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधक दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मद पावक जलंत कई सिमृत सात्र तुजरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पवन हार कई गर्त कोट वित को आहार कई गर्त साग पत्र भच्छ नहीं तब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व भरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ।

कई तीर्थ तीर्थ भरमत सोभरम गई अग्नहोत्र कई देव करम गई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम गई सिमृत शास्त्र दुजरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ गर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जो करीत कहूँ बिरद चार कहूँ गर्त जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जन निवास कई अग्नताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंत कई गर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दृश्य देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो।

जय जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्रशितं जे राग न रेख न रूप बणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नरपाल नृपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद वितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर था दिग पांद गणंग भूत भविख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवास छितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

अछूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंजे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग वो भंजर गंजन आदि रंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जा छु जंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई गल पल्लो तब ताप करे नहीं नैग।

रूप राग नरेग रंग न जन्म मरण बीन आदनाथ अकाद पुरक सो धर्म करम प्रवीन जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त गीट बिकै बस सब ठौर मै निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे

चंदन से जपावते चंद्रमा से चंदन के चांद का फिर अंदर बड़ जपन दवे चांद के सर से बड़ चंद्र का पिया से बुलंदा बाद की रदा रे हारे की जिया के बाद की रदा रे की जिया के सोहियत फरासी फिरंगी फरासी के दुपन रमी फरान के रदा के दे दे के दिलाई रात है हर बकरे गंगा के दौर के तरी गले जारी रमन के रंगा के तेरो नाम है रमन के हाथ के तेरो नाम है पूर्व बताओ काम रूप अमर सर्व बताओ काम राज जाओ जाओ सर्व बताओ मैं पूरे न पता भी जन के मंत्र दे अर्थ गुण नाद की वेद ते मन को जा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा पा

0: महाराज का कतल होया शहीद किया मनदे हां ते तुहाडे पुत्र ने भी एक संत नूं इत्थे मारना कीता मुसलमानी संत नूं
1: बख्शो को हमले लयो
0: ते फिर एक काम करना करो माता जी तुसी लिख करके दे दियो के जी के ए खून माफ कीता जावे एदा मतलब प्यारियो पहले जमाने दे विच इंज भी कीता जांदा सी खून का बदला खून बोलदे सन ते ए कानून सी प्यारियो उस जमाने दा बहुत लंबा समय कानून चलिया एदा की हुंदा के समझ लियो प्यारियो किसे व्यक्ति ने किसे व्यक्ति दा कतल करना कीता हुण सिद्धी जी गल है के भाई के ने जिने कतल कीता ओ दोषी है ते ओनू की करदे सन ते ओनू गिरफ्तार करके ते अगा अगला बंदा जिहदे घर दे मैंबर दा कतल हो गया ओहदे अगे पेश कीता जांदा ओनू कहा जांदा कि भाई इस बंदे ने तुहाडे फलाने बंदे नू मारना कीता ओहदा इह कातल है हुण इहनू जो मर्जी सजा देनी तुसी दिओ ते इहदा जिहड़ा है जे तुसी इहनू मारना शरे आम ओनू कह दिता जांदा जी इहनू मारना तुसी कह दिओ इहने साडे बंदे नू मारिया खून दा बदला खून इहनू असी मार देवांगे जे कुछ रहम करनी है हाथ पैर चटकाउणे आ ओह कर दिओ जे इहनू बख्शना ते फिर इह वी कहा जांदा सी कि फिर जिन्नी इहनां तों माया लैणी तुसी लै लिओ ओह सब उहनां दा काम हुंदा फिर कई बंदे कहिंदे कि नहीं जी इहने बंदे नू मारिया असी इहनू मारना ते ओनू मार दिता जांदा फिर ये कह देंदे कि सी के भाई चलो इन्हें मारिया मारना की है इहदे हाथ पैर वड जाओ ओहदे हाथ पैर वड देंदे कई जिहड़े लालची बंदे ओह कहिंदे सी जां जिहड़े कुछ ये हुंदे ओह कहिंदे जी साडा तां बंदा चल गया हुण इहनू मार दिता ते ओह बंदा थोड़ी आ जाणा इहदी भी जान चल जाएगी ओहदी तां चल गई फिर ओह कह देंदे जी इन्ना पैसा इन्नी जमीन जायदाद ये बंदा जे सानू देवेगा ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨੀ ਦਿੰਦਾ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਓ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ।

गहीरा कोई न जाने तेरा कीता केवड चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईयां सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां तुद विण सिद्धि कनै न पाईया करम मिलै नाही ठाकर हाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू दहे तसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ सचे नाम की लागै भूक उत भूखै खाए चलियह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए सचा साहिब सचै नाए रहाओ सचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट ना जाए ना

सुरहाल हर जिन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आई धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्म मस्तक लखिया लखास धन धन सत

चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कहे जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

हाथ दह राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्नि सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू नह ध्याऊं कान सुनै पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दौ चल राख आप मुहे और ना दल तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा।

0: तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला नानक
1: करके
0: करके महाराज अपना बना के रखे। इतिहास दे विच एक जिक्र आउंदा है, सरहंद दी धरती ते रहण वाला एक नौजवान लड़का भाई पहला सुनियारे सिखां दा लड़का है। इहदे पिता जी गहने बनाउण दा कम करदे। समा आया भाई पहले दे पिता जी बहुत बीमार रहण लग गए, बड़ा इलाज करवाया, बीमारी सी जेड़ी दिनों दिन वधदी गई, पर कोई फर्क ना पवे, पैसा बड़ा लगी जांदा। वैदा हकीमां दी समझ विच नहीं आउंदा वी बीमारी की है, की इलाज करिए, पर जिवें किसे नूं लगदा उवें दवाई दे जांदा, पर फर्क कोई नहीं पैंदा। जिदां गुरु साहब जी दा वचन है ना, महाराज कहिंदे वैदा संधा संग इकट्ठा होया,

आवे आस कर जाए निराश कित, फल पिके फूल पक पके काम न आवे पत, मिटत नी भी नानका गुण जिए तत, सबको नीवे आपको प्रको